लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को

0: भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.
1: Yeah. Heart to beat.

आवाज अच्छी है, बस थोड़ा नमक कम है। और राग में नमक आने के लिए नमकीन जिंदगी जीनी पड़ती है। और नमक ज्यादा हो जाए तो कड़वी हो जाती है जिंदगी। मैं आपसे संगीत सीखने आई हूं। हमारे यहां संगीत को गाना कहते हैं। गाना सिखाने की जो कीमत हो मंजूर है। हमारी कला इतनी अजीम है कि उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। आप शादीशुदा हैं। हमारा तजुर्बा है कि एक बार जो उस आग के चक्कर काट लेता है, उसके अंदर की आग